हर शुरुआत में गणेश, हर सफलता में गणेश, हर प्रार्थना में गणेश, हर विश्वास में गणेश। आइए विघ्नहर्ता को नमन करते हैं और उनका ध्यान करते हैं।

तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे वाहेगुरु गुण गावा। बाकी उस परम पिता परमात्मा दे गुण गान नूं मन करता है जो सानू सब कुछ देंदा है, जो साडा सहारा है, ते उस परमात्मा दा हर साह दे नाल गुण गाना, उस परमात्मा दी हर साह दे नाल सिफत करना, ये साडा फर्ज बनता है।

जहां श्रद्धा की ज्योति जलती है वहां निराशा का अंधकार मिट जाता है। मां का दरबार वो स्थान है जहां हर भक्त का सर श्रद्धा से झुक जाता है। तुसी सर्वन कर रहे हो भक्ति रसनाल भरपूर प्रोग्राम वंदना।

बांसुरी की मधुर तान में, बांसुरी की मधुर तान में प्रेम और भक्ति का संदेश छिपा है। श्री कृष्ण जी का नाम लेते ही मन आनंद से भर उठता है। जी तुसीं सर्वन कर रहे हो भगती रस नाल भरपूर प्रोग्राम वंदना 102.7 FM रेनबो ते। प्रोग्राम वंदना दा आनंद तुसीं माण रहे हो। ते हुण इस वक्त स्टूडियो घड़ी ते समा 6:30 होने जा रहे हैं। तो एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ के नाल हुण असी एफ एम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी अमृतसर वाले स्रोतियां नाल जुड़ चुके हैं। असी आकाशवाणी अमृतसर वाले स्रोतियां का निघा स्वागत करते हैं जो कि सवेर के 10 तक साढ़े नाल जुड़े रहेंगे। एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़, एफ एम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी के रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। तुसी सर्वन कर रहे हो भगती रस नाल भरपूर प्रोग्राम वंदना।

जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। बाकी उस परमात्मा दी जिहदे उपर मेहर हो जावे, जिस मनुख दे उपर वह परमात्मा अपना मेहर भरिया हथ रख दे, उस इंसान नू किसी भी दुख तकलीफ दे विच ना तो वह परमात्मा पैण दिंदा है, ना ही उस इंसान नू दुख मुश्किलां घेर सकदियां ने। उस दा सच्चा परमात्मा उस दी हर समय रख्या करता है।

जब जीवन की नाव मझधार में हो और कोई किनारा ना दिखाई दे, तब विश्वास का दीपक जलाइए और श्री राम जी पर विश्वास रखें। श्री राम जी आपको स्वयं जिंदगी में वो रोशनी की किरण ज़रूर दिखाएंगे।

एहसास पहली मोहब्बत का दिल में समाया है। एहसास पहली मोहब्बत का दिल में समाया है। नाम तेरा ही सनम मैंने सांसों में बसाया है। बहका इस कदर तेरी मोहब्बत के नशे में, बहका इस कदर तेरी मोहब्बत के नशे में, मुश्किल इस दिल पे रखना इख्तियार हो आया है। तेज हुई सांसें तेज दिल की धड़कन भी, तेज हुई सांसें तेज दिल की धड़कन भी, प्यार तेरा जाने कैसा ये मुकाम लाया है। एहसास पहली मोहब्बत का दिल में समाया है। मैका जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और नाल दी नाल न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप वाले दोस्तों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। स्टूडियो घड़ी ते समा 7:04 और 32 सैकंड हो रहे ने जनाब। थोड़ा और मेरा यानी कि सब दा फेवरेट वाला प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दा आगाज़ हो चुका है जनाब। ते अज दा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर लेके थोड़ा दोस्त ललित सोनी हाजिर हो चुका है जनाब। और मेरा ते थोड़ा साथ बनया रहेगा ठीक 10 बजे तक। 7 to 8:30 तक तुसी सुनोगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर। 8:30 होणगे पंजाबी दे विच खबरां और म्यूजिकली बैक टू बैक दा प्रोग्राम अडी टप्पा दा आनंद माणोगे 8:40 ते। और 9 बजे आगाज़ होएगा सब दे दिलां दी धड़कन पंजाबी विरसे दीआं बातां पाउंदा और पंजाबी गीतां नाल अबरेज प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी। सो पंजाब पंजाबी और पंजाबीयत दा झलकारा मिलदा है प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी दे विच। तुसी शिरकत कर सकदे हो 9 बजे। नंबर है 9855-1010-27। दिल खोल के दिल दियां गल्लां करांगे अज। फिलहाल अज सैटरडे वाली मॉर्निंग दे विच थोड़े रूबरू होने का मौका मिलिया। तो वीकेंड दे इस मौके ते थोड़ी की खास प्लैनिंग है, तुसी दस सकदे हो कि किवें तुसी किते जाण दी प्लैनिंग कर रहे हो, किते जाना चाहुंदे हो, या फिर कल संडे है तो कितने कितने तुसी घूमन जा रहे हो, कड़िया खास जगह तुसी देखन जा रहे हो, या थानू लगता है कि दोस्तों भी उन्होंने जगह पर जाना चाहिए, वो बारे भी तुसी साडे नाल राबता कायम कर सकते हो और अपने विचार साझे कर सकते हो। सो फिलहाल अज की प्यारी जी खूबसूरत जी मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका है। तो अज की इस खूबसूरत सजरी सवेर का प्यारी जी मुस्कान के नाल दिल खोल के स्वागत करते हैं। सुनते हैं मोहित चौहान की खूबसूरत आवाज़ के गीत, तो मिलते हैं इस गीत तो बाद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर के इनफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट और नाल दी नाल थोड़ी जानकारी के वाधा करने वाली गल्लां बातां के नाल।

102.7 FM Rainbow 103.6 MHz और नाल दी नाल न्यू जोन AIR ऐप ते तुसी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दा आनंद माण रहे हो अपने दोस्त ललित दे नाल। जिथे जिथे भी आवाज़ जा रही है, जिथे जिथे भी प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो, तुहानू सब नू प्यार भरी सत श्री अकाल और उम्मीद करते हैं कि तुसी हमेशा चढ़दी कला विच रहो, खुश बाश रहो। तुसी जो चाहते हो थोड़े वो सुपने पूरे होण, पर सुपनों पूरा होने के लिए जिंदगी दी राहां ते चलते हुए कोई रुकावट ना आवे ते अपने आप नू अपने शरीर नू जड़ाया फिट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अजकल दी इस भज नठ भरी हुई जिंदगी दे विच हर कोई जड़ाया बिजी हो चुका है, उन्हूं अपने आप दे लई अपने सेहत का ख्याल रखने दे लई किसी कोल समा नहीं है। पर इत्थे असीं गलती कर जांदे आं, असीं अपने बिजनेस दे चक्कर दे विच, असीं पैसा कमाउण दे चक्कर दे विच रब वालों दिती गई चंगी सेहत नूं अजाई बर्बाद कर देंदे ने और बाद विच सानूं फिर पछताउणा पैंदा है, क्योंकि समय रहिंदे हुए जेकर किसी चीज़ की कदर ना की जाए, चाहे वह इंसान होवे चाहे थोड़ी सेहत होवे, फिर उस तो बाद फिर उहदा माड़ा प्रभाव देखण नूं मिलदा है। सो इस लई समय रहिंदे ही अपने आप के बारे सोचना और अपने सेहत के बारे ख्याल रखना जेकर शुरू कर दिए तो बहुत वधिया होएगा और जिंदगी जिहड़ी आ ओह बेहतरीन होएगी। सो ये मैं नहीं कह रहा, ये जिहड़े खुद जिहड़े एक्सपर्ट डॉक्टर ने वो दस रहे हैं कि वो डॉक्टर की करते हैं, लोगों की सेहत का ख्याल रखने वाले डॉक्टर अपनी सेहत का ध्यान किवें रखते हैं, अपनी सेहत का ख्याल किवें रखते हैं। सो खुद ऑर्थोपैडिक सर्जन जिहड़े

102.7 FM रेनबो ते प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो तुसी। गुड मॉर्निंग जलंधर, अपने दोस्त ललित दे नाल। और प्रोग्राम दे विच गल्लबातां चल रही ने, खास जानकारी दे नाल, लबरेज नाल दी नाल थोड़े एंटरटेनमेंट का पूरा पूरा रखा जा रहा जनाब ख्याल। कहिंदे ने कि एक चंगा अध्यापक सिर्फ किताबां दा ज्ञान नहीं दिंदा, बल्कि सानू जिंदगी दे लई बेहतरीन करन दे लई जिंदगी दी साडी गड्डी नू सही

चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू है गौन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

नमस्कार, सवेर दे 9 बज चुके ने। एफएम रेनबो ते वेला हो गया है इस वक्त दे न्यूज़ हेडलाइंस दा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमरीकी समुद्री फौज दे हमले जिस विच तीन भारतीय नाविक मारे गए सन ते अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कोल सख्त विरोध दर्ज करवाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दौरान स्वदेशी मिजाइल प्रणालियां दी शानदार कारगुजारी भारत दे रक्षा खोज अते विकास सिलसिले दी वधदी ताकत दा प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती बोर्ड दी भर्ती प्रक्रिया संबंधी भारतीय रेलवे दे सीनियर अधिकारियों नाल एक उच्च पदरी समीक्षा मीटिंग की। भारत एआई मिशन ने वारिया नां दा एक वीडियो मॉडल जारी किया, घट कीमत ते अत आधुनिक वीडियो बनाए जा सकनगे। बीजेपी पंजाब प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 12 साल दौरान पंजाब नूं केंद्र तों बेमिसाल माली सहायता मिली है। पंजाब दे स्थानक सरकारां मंत्री हरजोत सिंह बैंस वल्लों नगर निगम अधिकारियों नूं हिदायत, लुधियाना शहर नूं 30 जून तक सड़कां दे टोयां अते मेन हॉल मुक्त बनाया जावे। बैडमिंटन विच भारत दी पीवी सिंधु दा मुकाबला अज सिडनी विच आस्ट्रेलियन ओपन दे औरतां दे सिंगल्स दे सेमीफाइनल विच जापान दी विश्व चैंपियन अकाने यामागुची नाल होएगा। अते मौसम विभाग ने 14 जून तक पंजाब, हरियाणा ते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ विच गरज चमक नाल मीह बारे येलो अलर्ट जारी कीता है। इस सन हुण तक दीआं एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।

0: यार राहुल, मैं काफी दिन तो तेनू देख रहा है, तू काफी बुझा बुझा जा, उदास उदास जा लगदा है, की हो गया?
1: की दसा यार, काम दा प्रेशर इन्ना है ना, मैनू लगदा है ना मेरी जिंदगी बोझल हो चुकी है। हुण तू ही दस, मैं इदां दा की करां कि जिंदगी च बुल्ले लुट सकां ते सुकून नाल रवां।
0: लै मित्रा, घबराउण वाली नहीं कोई गल, अपने कोल इहदा वी हल
1: की
0: जे तू चाहुंदा है तेरी रूह नूं मिले सुकून ते कर मित्रा FM।

0: मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 तो प्राप्त की जा सकती है।
1: ए, मेरा छोटा भरा है ना बहुत शरारती है। कॉलेज विच मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा नूं दिखाउंदा सी। कल मैं लाइट दे बिल ते जीरो अमाउंट वेखी। मैं सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किता होगा, नहीं तो जीरो बिजली बिल किवें पॉसिबल है। पूछया ते आखन लगा, वीर जी सब ऊपर वाले दी मेहर है, सोलर पैनल है ना। मैं क्या ओहे ठीक है पुत्र।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।

एक से दो छड़िए सत मेगाहर्ट्ज़ से तुसी प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो जी होम स्वीट होम एंड दिलजीत दुसांझ एंड गुरदास मान की सोहनी आवाज़ दे विच तुसी ट्रैक इंजॉय किया की बनो दुनिया का। लो जी खीरे बारे मैं गलबात कर रही सी तुहाडे नाल, खीरे दे किन्ने सारे फायदे ने खीरा खाण लई जेकर तुसी मतलब इनू इस्तेमाल करदे हो अपने खाने दे विच, ते वाह जी तुहाडी चमड़ी यानी कि स्किन ओह भी ग्लो करदी है ते नाल दी नाल तुहानूं फ्रैश फील हुंदा ते तुहाडे फेस ते दाग धब्बे भी घट जांदे ने ते तुहाडे जिहड़ा वजन वधिया होया तुहाडे कैलरीज़ नूं भी घटाउण दे विच इह कारगर सिद्ध हुंदी है। खीरा जिहड़ा ना पाचन प्रणाली नूं सुधारन दे विच भी मतलब फायदेमंद होंदा है, ते जिहड़ी कॉन्स्टिपेशन होंदी यानी कि कब्ज़ दी कईआं नूं प्रॉब्लम हो जांदी ने, मतलब कुछ भी खा लो ते बाद विच ओह उहनां नूं कॉन्स्टिपेशन ब्लोटिंग्स हो जांदियां, उहदे वास्ते भी इह बड़ा ही बेनीफिशियल है इहदा जेकर तुसीं इहनूं खांदे हो अपनी डाइट दे विच इहनूं ऐड ऑन करदे हो। खीरे दे टुकड़े जेकर तुसीं अखां दे उपर रखदे हो, जेकर तुहानूं लगदा है कि तुहानूं प्रॉपर नींद नहीं आ रही, तुहाडियां अखां थकियां ने, स्वैलिंग महसूस हो रही है, तुहानूं थकिया थकिया महसूस हुंदा, ते तुसीं अपने दिमाग नूं फील फ्री करोगे, उहदे वास्ते की कि तुसी दो टुकड़े अपनी अखां ते रख लैने ते 10 to 15 minutes रिलैक्स होकर आइज बंद करके सुकून वाली वाइब लैनी है ते उहदे वास्ते भी तुहानूं बेनीफिट देवेगा। इस विच पोटाशियम हुंदा जो कि ब्लड प्रैशर नूं संतुलित मतलब बैलेंस रखने दे विच भी मदद करदा है। खीरा शरीर विच टॉक्सिन नूं बाहर कढ़न दे विच मदद करदा है। एंड जी किन्ने ही सारे फायदे ने, जेकर असी किसी चीज़ के बारे चंगी तरह जानना होवे, सानूं समझ होवे उहदी खाण पीण बारे कि वाकई चीज़ दे नाल सानूं किन्ने बेनीफिट्स हो सकते हैं, तां ही कहिंदे कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਜ਼ਨਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜਾਂ ਫਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੀਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਯੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਯੰਤਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਫਰੂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਂਡ ਜੀ ਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਈਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿ ਖੀਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੀਰਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।

0: समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों, अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। कसम, सुनते रहिए
1: 2.7 FM Rainbow। यार सच दसा, हुणे तां गर्मियां शुरू होईयां ने ते 7-7 हजार रुपए बिजली दा बिल भी आउण लग पिया। वाइफ कदों तो बोल रही है सोलर पैनल लगाउण लई, ओ आखदी है कि सरकार सबसिडी भी दे रही है। मैं जिन्हां नूं भी पुछिया, उन्हां सब दा बिजली दा बिल जीरो आ रहा। इस बार मैं लगाई देना। जदों बिजली मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in। हर घर

102.1 प्रोग्राम चल रहा जी मिडडे मैलडीज और मिडडे मैलडीज का दौर जो शुरू होता है ना तो वाकई जी उस दहाके उस गोल्डन ईरा के जिन्हें भी सोंग ने ना सारे मैलोडी सोंग ने और उस अल्फाज के उस आवाज़ के जो कि लता जी किशोर कुमार जी उन्होंने गुनगुनाए ने उस सदाबहार अपने आप हो गए ने।

और सच कहा किसी ने कि किसी के इंतज़ार में जीना और उसको याद करना भी क्या बात है। मतलब ये भी तो एक प्यार है, कोई मिले या ना मिले, मिलने की चाहत हो या ना हो, लेकिन एक तरफा प्यार भी और पूरी ज़िंदगी उसकी याद में बिता देना, ये भी तो प्यार है। मस्त नज़रों से मुझको एक जाम दे दे, एक घड़ी ठहर जा आज की शाम दे दे, जी भरकर आज मुझको जी लेने दे, ऐ दोस्त ऐ हम सफ़र जी भरकर आज मुझको जी लेने दे, मेरे दिल की धड़कनों को थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आराम दे दे। 102.7 FM पर आप एंजॉय कर रहे हो जी पंकज उदास का गीत, और इसके बाद एक और गीत उनकी ही आवाज़ में, और आहिस्ता कीजिए बातें। सच्ची में जब प्यार में कोई पड़ता है ना, तो सच्ची में उसका दिल जो है वो कुछ ना कुछ तो कहने के लिए बेकरार रहता ही है।

अपनों से क्या शिकायत, अपनों से क्या बहाना। इदिति एक शेर लिखा है कि इश्क है तो जाहिर कर, इश्क है तो जाहिर कर, बना के चाय हाजिर कर, अदरक डाल या दाल, इलाची कूट कर अपनी मोहब्बत भी शामिल कर। सो जिहड़ी महफिल है सजी हुई है तो उडीक कर रही है तुहाडे मैसेजेस दी, प्यार भरे मैसेजेस दी, जो कि तुसी भेज सकदे हो सानू साडे व्हाट्सएप नंबर ते। नंबर एक बार फिर दस देनी हां तुहानू 9855-10-10-27-9855-101027। राम स्वरूप जी जो कि सुल्तानपुर तो सुल्तानपुर लोधी तो ने एक शेर साडे नाल सांझा करदे ने, लिखदे ने कि अब तो गम सहने की आदत सी हो गई है, रात को छुप छुप के रोने की आदत सी हो गई है, तू बेवफा है खेल मेरे दिल से जी भर के, तू बेवफा है खेल मेरे दिल से जी भर के, हमें तो अब चोट खाने की आदत सी हो गई है। वाह जी वाह। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तो बहुत ही सोहनी शायरी तुसीं साडे नाल सांझी कीती है। तो इदां ही जिहड़े होर दोस्त सानू सुन रहे ने, वो भी अपनी लिखियां होईयां या फिर किसी होर दीआं लिखियां होईयां शेर ओह शायरियां साडे नाल सांझियां कर सकदे ने। बस गल इन्नी है कि जे तुसीं अपनी लिखी हुई शायरी साडे नाल सांझी कर रहे हो तो बहुत वधिया गल है, जे तुसीं किसी होर दी लिखी हुई सांझी कर रहे हो तो नाल अपनी जिन्हां ने ओह लिखी है उन्हां दा नाम जरूर लिख दिओ। सो पेश कर रही हूँ अगली गज़ल तुहाडे लई, वो भी बहुत ही प्यारी जी आवाज़ विच, जसप्रीत शर्मा होरां दी।

जुल्फ जमा चश्म आरज लब चेहरा नहीं देखा, जुल्फ जमा चश्म आरज लब चेहरा नहीं देखा, मैंने मुकम्मल चाहा है तुझे कोई हिस्सा नहीं देखा। प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो दिल आशा है अपनी दोस्त ते होस्ट आर जरिया दे नाल, ते महफिल सजी पी है ते महफिल दे विच साडे जिहड़े कॉलर्स ने ऑडियंस है वो जुड़ी हुई है ते अपनी बहुत ही सोहणियां सोहणियां शायरियां साडे नाल सांझियां कर रही है। गोपी जो कि रेडू जलंधर तो ने लिखते ने कि रोज़ ही लिख रहा मैं खुद नू खुद पढ़ रहा, अपना साह मैं तेरे ना कर रहा, कि यह जिंदगी पर जमाना मैं पढ़ रहा, तनहा रहना औखा मैं नित सूली चढ़ रहा। फिर दूजा शेर लिखते ने कि कमली नाल एक सांझी चाह ना हुई, दूजी सांझी कदे साढ़े नाल निगाह ना हुई, तीजी बुलां तो कदे हां च हां ना हुई, चौथी मारी गई प्यार च होर च ਹੋਰ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪਨਾਹ ਨਾ ਹੋਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 9855 10 10 27 9855 10 1027।

सोचता हूँ खुद से मिलूं किसी दिन, सोचता हूँ खुद से मिलूं किसी दिन, फिर सोचता हूँ क्या कहूँगा, कहाँ था इतने दिन। प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रही हो दिला शायर अपनी दोस्त ते होस्ट आज रिया दे नाल, ते जिहदे विच इस प्रोग्राम दे विच बहुत सारियां शेरो शायरियां कवितावां दा पिटारा लैके तुहाडे लई हाजिर हो गई हां मैं अज। जसप्रीत जी जो कि जलंधर तों ने एक शेर साडे नाल सांझा करदे ने, लिखदे ने कि सोचता हूँ फुर्सत मिली तो आएंगे और पिएंगे एक कप हम भी, फुर्सत मिली तो आएंगे और पिएंगे एक कप हम भी, सुना है तुम चाय में इलायची मुँह से तोड़कर डालती हो। आज मैं बहुत ही सोहना शेर तुसी साडे नाल सांझा कीता है, तो तुसी चाह ते इलायची की गल कर दी है, तो वैसे भी 3 बज गए ने, तो मैं लगता है कि चाह पीने का जो टाइम है ना शुरू हो ही गया, तो मौसम भी है ना जो बहुत सोहना हो गया, तो सोहने सोहने मौसम के जो शेरों शायरियाँ सुनने मिलन तो गज़लां सुनने मिलन ते नाल ही नाल मौका मिले अपनी शेरो शायरी साडे नाल सांझी करन दा, ते उत्तों सोहना होर की ही हो सकता है। ते तुहानूं रस्ता भी दस दिंदे आ कि तुसीं

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं शिल्पा गुप्ता और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। तपती धूप, बढ़ता तापमान और बदलती खानपान की आदतें, ऐसे में सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारे पाचन तंत्र पर। अपच, गैस, एसिडिटी, दस्त और भूख कम लगना जैसी समस्याएं इन दिनों आम हो जाती हैं। ऐसे में यूनानी चिकित्सा पद्धति किस तरह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। रेडियो डॉक्टर में हमारा आज का विषय है समर्स डाइजेस्टिव इश्यूज एंड यूनानी मेडिसिंस। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूनानी चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर सैयद अहमद खान, यूनानी एक्सपर्ट। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: बहुत शुक्रिया आपका।
2: और साथ है डॉक्टर सूफिया उत्साही, चीफ मेडिकल ऑफिसर, यूनानी मेडिसिंस, CGHS। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमें आपने याद किया।
2: आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम बात करेंगे गर्मियों में पाचन संबंधी समस्याएं और यूनानी चिकित्सा पर अपने विशेषज्ञों से। तो डॉक्टर सैयद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि गर्मियों में पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ने के मुख्य कारण क्या है?
3: असल में सबसे बड़ी वजह होती है बाहर का खानपान और ज्यादा चिकनाई वाली चीजें खाने से। आमतौर से होता क्या है कि गर्मियों में जो है बहुत जल्दी खाना जो है हमारा अगर बासी हो जाता है तो ज़्यादा इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। उसमें जो है डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग, इस तरह की कैफियत पैदा हो जाती है। मुख्तसर यह है कि हमें इससे बचना चाहिए। एक तो ज़्यादा तली हुई चीज़ें जिसमें ज़्यादा चिकनाई हो, घी तेल, वो कम इस्तेमाल किया जाए। और बाहर के जो हैं, जो भी आदमी घर से निकला है, उसको ज़रूरत पेश आई, भूख लगी, तो देख ले कि खाना सही है या नहीं सही जगह है। कम खाए लेकिन ताज़ा और सादा खाना खाए, इसकी खास कोशिश की जाए।
2: तो कुछ ऐसी चीज़ें जो वो साथ लेके अपने चल सकते हैं कि अगर हम बाहर का खाना ना खाना चाहें जनरल में वो ले सकते हो?
3: देखिए, सबसे बढ़िया तो ये है कि हम

0: यानी नॉर्थ इंडिया में खास तौर से चना और जौ का सत्तू जो है बहुत मशहूर है, और पानी आम तौर से हर जगह मिल जाता है, या फिर पानी भी साथ लेके चले तो आदमी आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकता है। ये इस सीज़न की बहुत बढ़िया यानी गज़ा है, कह लीजिए न्यूट्रिशनल चीज़ है ये। इसका एक बड़ा फ़ायदा यह है कि बॉडी के अंदर जो इस वक्त जो मौसम है वो मिजाज के एतबार से गर्म और खुश्क है, तो ये जो है शरीर को तरी पैदा करता है।
1: जब हम मौसम की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर सूफी आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम में सबसे अधिक कौन कौन सी पेट संबंधी समस्याएं हैं जो देखने को मिलती हैं?
2: आजकल तो गर्मी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स पेशेंट्स लेकर आते हैं, क्योंकि उसमें लूज मोशन का है, गर्मी लग गई, बहुत ज़्यादा उनको डायरिया हो गया एंड लूज मोशन होते हैं, इस टाइप के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से पानी की कमी या पानी नहीं लेते हैं या इन सब चीज़ों को लेना चाहिए, तो इस टाइप के ज़्यादा हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कि जिनको गर्मी की वजह से लूज मोशन एंड डायरिया एंड वोमिटिंग इस टाइप से हमारे पास आते हैं, और उनको पानी और ORS नेबर लेमन वगैरह इसको एडवाइस किया जाता है कि इसको आप पानी में लीजिए, पुदीना लीजिए, सारी चीज़ों को लीजिए, जिससे उनको थोड़ा सा रिलीफ रहता है। और हमारे पास और भी बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जिसको हम देते हैं, पुदीने का पानी होता है, अजवाइन का होता है, ये सब चीज़ें हम उनको ऐड करके देते हैं
1: जिससे गर्मी में ठंडक का एहसास रहे,
2: ठंडक का एहसास हो
1: जी। इसमें हम बात ये भी करेंगे कि यूनानी चिकित्सा पद्धति क्या है और किस प्रकार पाचन तंत्र को संतुलित रखती है, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: चिकित्सा पर। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि यूनानी चिकित्सा पद्धति क्या है और ये किस प्रकार पाचन तंत्र को संतुलित रखती है।
1: यूनानी चिकित्सा पद्धति सदियों पुरानी, इस एक साइंटिफिक बेस पर इसको हकीम बोकरात ने, जिन्हें हिप्पोक्रेट भी कहते हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की। हालांकि पहले से चल रही प्रचलन तो बहुत पहले से रहा, लेकिन उन्होंने बाकायदे उसको एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, खास तौर से उन्होंने खिल्त और मिजाज। तो वो कहते हैं इसका बैलेंस अगर रहता है तो शरीर में कोई तकलीफ नहीं होती, और जब ये डिसबैलेंस होते हैं चारों खिल्त और मिजाज, तब जो है जाकर तकलीफ बढ़ती है। जाहिर है गर्मियों का सीजन है, इसमें उमूमन जो है खुश्की और गर्मी, ये दोनों चीज़ें बढ़ी हुई होती हैं। तो इस लिहाज से हुक्मा इसके यानी जो खास तवज्जो दिया उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम पर, और उसके लिए उन्होंने माना है कि अगर जिगर हमारा सही काम कर रहा है, लीवर, तो समझिए कि हम बिल्कुल फिट रहेंगे। तो लीवर से संबंधित जो दवाएं हमारे पास में हैं वो बहुत यानी अच्छी तादाद में मौजूद हैं, और इसके बहुत सारे क्लासिकल दवाएं हैं, जैसे माजून दबिदुलवर्द है, जवारिश नारायण है, जवारिश आमला है, ये सब दवाएं बहुत सारी जिगर की हैं, जो काबिज भी हैं, यानी जैसे किसी को डायरिया हो गई या डिसेंट्री हो गई तो उसमें इन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर जवारिश नारायण का बहुत बड़ा रोल है। तो इसी तरीके से जो है इसमें चहार तुख्म का भी इस्तेमाल होता है। चहार तुख्म जो होता है चार किस्म का बीज होता है, जिसमें यह है कि तुख्म बारतंग है, तुख्म रेहान तुलसी का बीज, इस सब गोल मुसल्लम, और तुख्म कनौज। तो चारों बीज एक साथ जो है जमा करके किसी को भी पेट में गर्मी है, दस्त है, मरोड़ है, IBS की शिकायत है, उन सूरतों में जो है हम इसे इस्तेमाल कराते हैं। सादे पानी से एक चमचा निगल लिया। इसके अलावा जो है हुक्मा ये मान के चलते हैं कि ये इन्फेक्शन में भी काम करेगा। कई बार ऐसा होता ना कि डिसेंट्री हो गई, इन्फेक्शन के सबब हुई है, तो उसमें हम जो है अर्क अजीब भी देते हैं। अर्क अजीब जो है ये बहुत बेहतरीन फार्मूला है। इसमें जो है सत्य पुदीना है, सत्य अजवाइन है, और सत्य काफूर
2: है।
1: इन तीनों को बराबर मिला लेते हैं, एक बेहतरीन घोल तैयार हो जाता है। इसकी दो बूंद आधे कप पानी में पी लीजिए, तो इससे आपको फौरी तौर पर एक यानी जो भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस है, डिसेंट्री है, इन्फेक्शन है, उन सब में काम करेगा।
0: तो ये रोजमर्रा में ले सकते हैं या तकलीफ हो तभी इसका
1: बेहतर है कि तकलीफ हो तो लें
0: जी,
1: क्योंकि जाहिर दवा का मतलब है, दवा और गजा दो अलग अलग चीजें हैं
0: जी।
1: तो इलाज बिल गजा हमारे यहाँ बहुत मशहूर है कि ऐसे वक्त में हम वो चीज खाएं जिससे दवा की जरूरत है पेश आए। तो जाहिर है कि दवा जो है जब जरूरत हो तो भी ली जाए।
0: तो दर्द में ही दवा ले, लेकिन रोजमर्रा में जो ये गर्मी है इससे बचने के लिए हम क्या करें कि जिसे बीमारी ना पड़े।
1: हाँ, इसके लिए तो एक बहुत मोटा सा फार्मूला है, आम आदमी जानता है कि सादा खाओ और ताजा खाओ और कम घी तेल और मसाला इस्तेमाल करो। मौसम के जो फ्रूट्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कुदरत ने जो हमारे लिए एक वरदान तौर पर कह लीजिए, हर सीजन में जरूरत के मुताबिक सब चीजें पैदा होती हैं। अब जैसे आजकल खीरा, तरबूज, ककड़ी, ये सब चीजें हैं बदन को तर रखने के लिए। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां मतलब है कि ये सब चीजें नहीं दस्तयाब होती, जैसे आम मान लीजिए है, आम बहुत बड़ी नीमत इस वक्त है
0: जी।
1: कि किसी गर्मी लग गई, लू लग गया हो, पेट में कोई खराबी आ गई है, तो आम का पन्ना इस्तेमाल करें। आम को उबाला कैरी को
0: जी।
1: और उबालने के बाद उसके गूदे को जो है पानी और चीनी नमक मिला करके इस्तेमाल कर सकता है इंसान। और जो लोग शुगर पेशेंट हैं वो चीनी मत मिलाएं, हल्का नमक मिला लिया करें।
0: तो उनके लिए जो शुगर पेशेंट है आम का अल्टरनेटिव भी कुछ और है।
1: हाँ, जाहिर है कि उनके लिए तो यही चीज है, लेकिन इसमें चीनी मत मिलाएं, वो थोड़ा टेस्ट से परहेज रखें, नारियल पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीजें कुदरत ने हमें हर सीजन के लिहाज से चीजें दी हुई हैं, और उसी का हम इस्तेमाल पहले करें ताकि हम दवा से बच सकें।
0: एहतियात बरतने के बाद भी अगर किसी को अपच, गैस या एसिडिटी की समस्या आती है तो उसके लिए यूनानी उपचार कैसे किया जाता है, डॉक्टर सूफिया से हम जानना चाहेंगे।
2: पहली बात तो हमें अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना चाहिए गर्मियों में, जैसा कि हमें बहुत ज्यादा ऑयल, बहुत ज्यादा मसाले, ये सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हमारे यूनानी में बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो बहुत अच्छा हम असर करती हैं। जैसे पुदीने का एक पेस्ट आता है, जवारिश पुदीना जैसे बोलते हैं, जवारिश तमर हिंदी आती है, वो सब ठंडी दवाइयां जो पेट को बहुत अच्छा वो करती हैं। शरबत में जैसे गुड़हल का शरबत है, शरबत बेलगिरी बहुत अच्छी है, आप दो दो चम्मच सुबह दोपहर शाम भी ले सकते हैं, शरबत की तरह पी सकते हैं उसको, और शरबत अनार भी ले सकते हैं। ये सब चीजें बहुत ही इफेक्ट करती हैं। बस ये है कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए गर्मियों में कि गर्मी की वजह से जो जो चीजें हमें ज्यादा हार्म कर रही हैं, बहुत मिर्च है, मसाला है, बाहर की बहुत सारी चीजें, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। आजकल पता नहीं कैसे क्या किस तरीके से लोग बनाते हैं, कितने वक्त रखते हैं, फ्रोजन फूड अवॉइड करना चाहिए। मेरे समझ से इन चीजों के लिए हमारी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है।
0: तो जो जो आपने शरबत बताई, क्या इनमें से कुछ ऐसा है जो हम रेगुलर

0: बेसिस पे ले सकते हैं?
1: शरबत बेलगिरी है, शरबत अनार है, ये बराबर आप ले सकते हैं।
0: तो ये सभी लोग ले सकते हैं या शुगर पेशेंट्स या
1: शुगर,
0: बच्चों के लिए?
1: शुगर फ्री तो इसमें शायद नहीं है, अभी बच्चे ले सकते हैं, जो जिसको शुगर है वो थोड़ा अवॉइड करे, वो कुछ और चीजें से पुदीना है, लेमन है, नमक है, जीरा भुना हुआ डाल के कुछ एक ड्रिंक बना ले, वो ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा उसको कोल्ड करके लिया जा सकता है। गोंद कतीरा का भी बहुत अच्छा इस वक्त इफेक्ट आ रहा है, तुक मलंगा का भी बहुत अच्छा है, उसको भी मिक्स करते हैं, भिगो के 4-6 घंटे, उसके बाद उसको आप पानी में मिक्स करके उसको, उसमें पुदीना है, थोड़ा सा लेमन है, ये डाल के आप इस्तेमाल करते हैं। शुगर के पेशेंट जो है वो नमक का यूज कर रहे हैं, काला नमक का यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा। गुड़ का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में ले सकते हैं उसको, है ना।
0: गर्मी के मौसम में पुदीना नींबू सुनने में इतना अच्छा लग रहा, तो लेने में और भी आनंदमय रहेगा।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो डॉक्टर सैयद आपसे जानना चाहेंगे कि अगर फिर भी अगर कोई, जैसे आपने बार बार कहा कि जंक फूड ना लेकर फिर भी किसी को ने अगर खा लिया और उसको फूड पॉइजनिंग हो गया या कुछ
2: जी,
0: उसकी तबीयत खराब हो गई, तो उनके लिए यूनानी चिकित्सा क्या सलाह देगा, क्योंकि आजकल मौसम ऐसे ट्रेवल भी कर रहे हैं लोग।
2: बिल्कुल सही है। अव्वल तो हमने बताया कि घरेलू तौर पर जो हम अपने साथ रख सकते हैं, जो चीजें खराब ना हो, उसमें खास तौर से चने और जौ का सत्तू जो है वो नंबर एक पर है। दूसरी चीज ये है, अगर हो ही गया है, तकलीफ आ गई, तो एक तो हमने बताया अरक अजीब का इस्तेमाल है, 2 बूंद अरक जो है आधे कप पानी 1 कप पानी में लेकर के पी लिया, उससे फौरी तौर पर उसकी वोमिटिंग रुक जाएगी। इसके अलावा यह है कि डिहाइड्रेशन अगर वाकई हो ही गया है, उसे चाहिए कि अपने करीब के किसी हॉस्पिटल से रुजू करें वो, चूंकि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि डायरिया वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, तो उसको रिहाइड्रेट करने के लिए वो आदमी जो है डिहाइड्रेशन से बचे, उस पर हम खास ध्यान देते हैं। और ये जो ORS वगैरह का बताया गया है, धीरे धीरे करके सिप करके पिएं, एक बैग बहुत ज़्यादा नहीं पानी इस्तेमाल करें, या जो कोई भी शरबत हो तो उसका इस्तेमाल धीरे धीरे किया जाए, तो वो जो है डाइजेस्ट होकर के फिर हमें जो कमी पानी की है वो पूरी होती रहेगी। तो ये असल में ज़रूरी है कि उपचार तो उपचार है, इलाज में जल्दबाजी नहीं, और उसमें उसी तरीके से काम किया जाएगा जैसा कि जो ज़रूरत पेश आई। अब किसी को डायरिया और वोमिटिंग दोनों है, तो उसमें पहले मरहले में एक तो अरकजीत दे दिया, फिर जवारिश पुदीना आता है, जवारिश पुदीना विलायती कहलाता है, तो उसको इस्तेमाल कराएंगे। ऊपर से फिर हम ये शरबत जो है आपका अनारायण कहा है, शरबत अनार के नाम जाना जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाए। फिर इसके अलावा जो है हब्बे पेच के नाम दवा आती है हमारी, जो यूनानी दवाएँ हैं, तो उसमें एक गोली दे दिया, या हब्बे सुमाक दे दिया, इस तरह कोई चीज़ आती है दवाएं हमारी यूनानी की, जो क्लासिकल मेडिसिंस हैं, जनरल मेडिसिंस कहलाती हैं, ये हर जगह मिल जाती है आराम से, तो इसका भी हम उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये है कि देखना ज़रूरी होता है कि पेशेंट जो है किस कंडीशन में है इस वक्त, क्या कैफियत उसकी है, उसको फौरन हम हॉस्पिटलाइज करें या फिर घर पर ही उसका इलाज करें, तो उसकी कैफियत देखने पता लगे कंडीशन क्या उसकी है। और ये बहुत बड़ी समझदारी होती है आदमी को कि बर वक्त जो है उसका इलाज किया जाए और कहाँ किया जाना बेहतर है। किसी को मान लीजिए बहुत तेज़ धूप लग गई, सनस्ट्रोक हो गया, लू लग गई, तो ठीक, घर पर जो हमारे उपचार मौजूद है वो तो हमने दे दिया, और उसमें आज के सीज़न में ये जो पना आम का जो बताया कि कैरी को उबाल करके उसका गुदा निकाल करके चीनी पानी का घोल बना करके पिला रहे हैं उसे, ORS की सूरत में भी हम दे सकते हैं, ये सब बातें हैं खैर। लेकिन अगर हम महसूस करते हैं कि इसको और ज़्यादा अच्छा उपचार चाहिए, तो हम उसको हॉस्पिटल में रेफर कर दें, ये भी एक इलाज का बड़ा हिस्सा है और बड़ी समझदारी की बात होती है।
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर।
2: जी
0: हेलो।
3: जी पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी नमस्कार, बताइए आपका क्या प्रश्न है।
3: डॉक्टर साहिबान को मेरा सलाम पहुँचे।
2: शुक्रिया साहब, बहुत बहुत।
3: हमारे यहाँ यूनानी में अर्क चिकित्सा का बड़ा महत्व है।
2: जी जी बिल्कुल।
3: सुना है कि अर्क मकोए, बहुत सारे अर्क जो है बहुत कारगर है, तो कृपया अर्क के बारे में बड़े तफसील से बताइए।
2: देखिए अरक जो है ये आम तौर से हम उस वक्त देते हैं जब महसूस हो कि जिगर में सूजन है या जिगर बढ़ गया है, तो उस सूरत में जो अरक मको है, अरक कासनी है, अरक ब्रंजासप है, इसको हम इस्तेमाल कराते हैं। और अगर ये लगता है कि गैस वैस ज्यादा बन रही है, तो उसमें अरक अजवाइन को बढ़ा देते हैं और
1: फैटी लिवर में भी देते
2: हैं। जी जी, तो ऐसी कैफियत में जो है, बहरहाल ये जानना जरूरी है कि अरक का इस्तेमाल कौन कौन से एक साथ किए जाएं। तो ये जो 3 अरक हमने बताए हैं शुरू में, ये तमाम सारे फैटी लिवर हो या लिवर एनलार्ज हो या और कोई कैफियत है तो, या सूजन आंतों में हो बड़ी में,

0: देते हैं हमसे। तो चूंकि इसका असली काम जो है स्वेलिंग को कम करना है और फैट को डिजॉल्व करना भी है, इसीलिए फैटी लिवर में बहुत अच्छा इफेक्ट इसका होता है। तो खास तौर से अगर एक साथ हम चार अरक इस्तेमाल करें, कासनी, अर्क मको, अर्क बादियान और अर्क ब्रेंजासर, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, जल्दी आएगा। इसको कम से कम यह है 15 ml ईच सभी को जो है, चूंकि तफसीर से जानना चाह रहे हैं वो कि हम अरकियात के बारे में, जो अरक का महत्व तो बहुत ज्यादा उन्होंने पूछा, बताया, समझा भी है, और जाहिर है कि ये अच्छा नॉलेज रखते हैं इस सिलसिले में, बड़ी अच्छी बात है। तो इनमें जो है एक कप में हम सभी में से 15 15 ml जो है, यानी चार चार ढक्कन कह लीजिए, जो बोतल का ढक्कन होता है वो भी एक पैमाना है उसका नापने का, तो उसे चार चार करके एक कप में रख लिया और एक साथ मिलाकर पी लिया। अगर अरक को हम खाली पेट पिए अजवाइन के अलावा तो बहुत अच्छा फायदा रहेगा। जीरे का अरक भी होता है, जीरे का अरक हम देते हैं सुबह नाश्ता के पहले सफ़ो मुहज़्ज़िल के साथ, जिसका पेट बढ़ा हुआ हो, फैट ज़्यादा हो, उसे कम करने के लिए बहुत कारगर दवा है ये, और ये बहुत ही मशहूर कैलस्कर मेडिसिन है ये। तो हर जो अरक है, अरक नाना जैसा जिक्र किया हमने, अब आजकल सीजन में गर्मी है, इसमें हम अरक नाना मतलब कहते हैं पुदीना का अरक, यानी पानी एक तरह का, तो उसे जो है जब हम कशीद करके बोतल में रखते हैं तो उसे अरक बोलते हैं। अरक का मतलब ये है कि उसकी पूरी जो है रूह को कशीद कर दिया, वो सब चीजें उसमें आ गई, और उसकी वजह से वो डाइजेस्टिव होता है, बहुत ज्यादा एब्जॉर्बल होता है। बॉडी के अंदर कोई चीज हम खा रहे हैं, खाना कमाल नहीं है, उसे कहते हैं पचाना कमाल। पचाने से मतलब यही होता है वो चीज जो है एब्जॉर्ब हो रही नहीं हो रही है, तो ये बड़ा अहम मामला होता है, तो इसको समझना चाहिए। तो जो भी अरक इस्तेमाल करें उसमें ये जानना चाहिए कौन सा किसके लिए है और कब लिया जाए।
1: एक मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं, डॉक्टर नमस्कार, मैं मेरठ से संजय बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे पित्त की थैली निकल चुकी है और जब से मुझे एसिड और गैस बहुत बनती है, और अब तो एक काम और हो रहा है, अगर मैं ठंडा या बासी खाने से पेट फूल जाता है और टाइट हो जाता है, और टमाटर और अचार खाने से पेट में दर्द होने लगता है, और नहीं खाता हूँ तो ठीक रहता है, डाइजेशन में दिक्कत हो रही है, क्या करूँ?
0: हाँ, असल में जो इन्होंने बताया कि गाल रिमूव हो जाने के सूरत में जो लीवर का जूस हमें चाहिए, बाइल जूस इसे कहते हैं, उसके ज़्यादा ज़रूरत भर ना मिलने की वजह से ये होता है कि जो एसिड है ना वो बेस में तब्दील नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से इनडाइजेशन की प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, किसी को हार्ट बर्न की शिकायत हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो एसिड बेस का बैलेंस जब नहीं रहेगा बदन में तो फिर ये दिक्कत पैदा होती है। इसमें जो दवा इनको इस्तेमाल करनी है बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, हर जगह मिल जाएगी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इससे पूरी तरह से फायदे में रहेंगे। वो ये है माजून दबीदुल वर्द, माजून दबीदुल वर्द। तो दबीदुल वर्द जो है ये 5 ग्राम और ऊपर से जो है अर्क कासनी, अर्क मको 15 15 ml, ये खाली पेट सुबह नाश्ता के पहले, शाम खाने से पहले इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा यह है कि शाम को सोते समय इन्हें चाहिए कि उस वक्त जवारिस शाही 1 चमचा शाम यानी डिनर के बाद ले लिया करें। यह तो बिफोर है माजून और अरक, और इसको लेना हमें आफ्टर
1: डिनर।
0: डिनर तो ठीक रहेगा इनको।
1: एक कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे श्रोता। हेलो,
2: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, दोनों को।
0: हाँ भाई, बहुत शुक्रिया
3: नमस्कार,
0: आपका,
3: थैंक यू।
2: डॉक्टर साहब, मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, गाँव
0: जी जी जी
2: करनाल है जी।
0: जी
1: जी बताइए।
2: अच्छा सर, मेरा भाई है छोटा मेरे से, उसकी 42 साल उम्र है, और उसको जो है ना भूख नहीं लगती, और वो 2009 से यानी 17 साल से मेंटल इलनेस की दवाई खाता है सर, और रोटी बिल्कुल नहीं खाता, ठीक तरह से नहीं खाता, मतलब थोड़ी बहुत ही खाता है जी, तो क्या किया जाए उसको? और मेरी प्रॉब्लम, मैं आप अपनी प्रॉब्लम बताता हूँ सर।
0: ठीक है भाई, के लिए जो है आप जो है जवारिश तमर हिंदी ले लीजिए, जवारिश तमर हिंदी, तमर TMAR, तमर यानी ता मारा, जवारिश तमर हिंदी, ये आधा आधा चमचा सुबह शाम खाली पेट उनको दीजिए, और खाने के बाद उनको हब्बे कबीर नौशादरी दीजिएगा, दो दो गोलियां। आवाज शायद इनकी अब
1: आवाज
0: डिस्कनेक्ट हो गई है, बहरहाल वो भाई के, वो उनके हमने बता दिया, वो दवाओं की जो खुश्की होती है, जो अंग्रेजी दवा हम खाते हैं आमतौर से, उसकी खुश्की ज़्यादा पैदा हो जाती है, उसकी वजह से दिक्कतें पैदा होती हैं। खैर, तो ये दवा जो है जो हमने उनको बताया तो उससे उनको राहत मिलेगी।
1: आज रेडियो डॉक्टर में जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि समर डाइजेस्टिव इश्यूज एंड यूनानी मेडिसिंस पर, हम आपसे ये भी जानेंगे कि कुछ ऐसे नुस्खे हैं कि आज जिन्हें लोग आसानी से अपना सकते हैं जिससे सभी की समस्याओं का समाधान हो जाए, इस पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं समर्स डाइजेस्टिव इश्यूज एंड यूनानी मेडिसिन पर। इस पर अभी हम जानेंगे कि यूनानी मेडिसिन में ऐसे कौन से नुस्खे हैं जिसे हम आसानी से अपना सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक श्रोता है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: अस्सलामुअलैकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम।
2: हाँ जी, कस्बा किठौर जिला मेरठ से बोल रहे हैं जी, सलाउद्दीन।
3: शुक्रिया साहब, फरमाएं।
2: सर मेरे अभी करीब एक साल हुआ तो मेरे वो निकल आई थी हर्फीस।
3: जी जी।
2: तो मैंने ये आपके जो यूनानी से ही दवा खाई, अल्लाह का शुक्र है उससे बहुत फायदा हुआ मुझे, एक साल हो गया।
3: जी जी।
2: तो ये दाने दाने से थे, तो इसमें हमारे लिए उन्होंने एक तो मरहम लिखा था। मरहम है सफेद काफूरी।
3: जी जी बिल्कुल ठीक।
2: और एक इसमें था हमारा ये शरबते उन्नाब।
3: जी।
2: और एक थी इसमें माजून दवद दवल दर्द।
3: माजून दबीदुल वर्द था, ठीक है।
2: जी हाँ, ये तीन चीजें थी सर। तो मैं ये मालूम करना चाहता हूँ, जैसे ये गर्मी पड़ी है मुझे, इसमें खुजली सी दोबारा लगने लगी है, क्यों फिर ये दोबारा यही दवाई खाई?
3: नहीं, अब आप माजून उशबा ले लीजिए।
2: माजून
3: उशबा।
2: मुशबा। अच्छा,
3: उशबा। बड़ा सा और बा उशबा।
2: हाँ मुशबा। अच्छा,
3: माजून उशबा हो जाएगा, और साथ में जो है शरबत उन्नाब लेते रहिएगा।
2: जी जी जी।
3: और अगर कहीं आपको
2: जी
3: नीम के फूल मिल जाए, फूल
2: नीम के,
3: हाँ, या नीम का तेल मिल जाए।
2: जी जी।
3: तो ज्यादा अच्छा है, नीम के तेल इस्तेमाल कीजिए, आसानी से मिल जाता है।
2: अच्छा हाँ, क्योंकि मैं अभी वहाँ गाजियाबाद गया था, वहाँ यूनानी बहुत अच्छा अस्पताल है, वहीं से ही दवा चली थी।
3: जी जी बिल्कुल ठीक है, गाजियाबाद में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन।
2: जी जी हाँ हाँ।
3: तो वो है, बहुत अच्छा है, वहाँ से आपने सही जगह आप गए, और जाहिर है कि भारत सरकार का बहुत बड़ा हॉस्पिटल हाँ, है यूनानी का।
2: जी मैं हाँ उसी से ही, मुझे बताया था उस टाइम में किसी ने कि भी वहाँ चले जाओ।
3: नहीं, ये अच्छा किया, और फिलहाल आप नहीं ले लो, काफी रहेगा।
2: ठीक है जी, शुक्रिया जी। और आप आते हैं जी डॉक्टर के उसमें, यहाँ प्रोग्राम होता है, बहुत अच्छा लगता है सभी को जानकारी।
3: जी इसमें आकाशवाणी का बेहद शुक्रिया।
2: हाँ जी, जितने भी हमारे साथी सुन रहे हों भाई, हम उनकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक मैसेज भी हमारे पास, वो लिखते हैं, दोनों डॉक्टरों और एंकर मैम को गुड आफ्टरनून। वो पूछते हैं कि यूनानी चिकित्सा में मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के लिए क्या खानपान व कौन सी दवाएं ले सकते हैं, कृपया बताने की कृपा करें। नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
3: जी काफी अच्छा सवाल इन्होंने किया, हालांकि आज का प्रोग्राम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पर है, लेकिन जाहिर है कि इससे रिलेटेड भी है। तो खाने पीने में ख्याल रखें, समय से खाएं और नींद पूरी लें। इसके लिए एक खमीरा आता है, खमीरा गाव जबान अंबरी जदवार उदय सलीब वाला। एक बार और बोल देता हूँ, लिख लीजिए, खमीरा गाव जबान अंबरी जदवार उदय सलीब वाला। ये रोज़ाना 5 ग्राम सोते वक्त इस्तेमाल करें, और सुबह सवेरे जो है दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाली आधा चमचा, इसका इस्तेमाल लगातार कम से कम 6 महीना कीजिए। इससे काफ़ी आपको सुकून मिलेगा और दिमागी तवाज़ुन भी अच्छा बनेगा। और यह है कि खाने पीने में ख्याल रखें, कब्ज ना होने पाए और गैस कम बने। आप जो कुछ हम खाते पीते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है एक उम्र के साथ कि हमें क्या चीज़ नुकसान कर रही है, क्या फ़ायदा कर रही है, उसी लिहाज से अपना खाना पीने का चयन करें तो अच्छा रहेगा।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, वो लिखते हैं, डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एंड बर्निंग मैच्योरेशन के लिए यूनानी चिकित्सा बताएं, अनिल गुरुग्राम से।
3: जी इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये शुगर पेशेंट हैं या बहरहाल अगर शुगर पेशेंट हैं तो उनके लिए शरबत बजूरी SF के नाम से आजकल आ रही कुछ कंपनीज बना रही हैं जो शुगर फ्री है, लेकिन जो शुगर फ्री जिनको शुगर नहीं है उनके लिए अच्छी बात यह है कि वो शरबत बजूरी मोतदिल, ये क्लासिकल मेडिसिन यूनानी की हर जगह मिल जाएगी, 2-2 चमचा सुबह शाम नाश्ते के बाद शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है माजून दबीदुल वर्द, ये सुबह शाम

0: लंच और डिनर से पहले 5 ग्राम, और बिफोर ब्रेकफास्ट जो है माजून फलासफा 1 चमचा इस्तेमाल करेंगे, तो इससे कुछ दिनों के बाद उनको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अलबत्ता यह है कि माजून दबीदुलवर्द के साथ साथ जो है वो अरक कासनी, अरक मकोह और अरक ब्रंजासा भी इस्तेमाल करें।
1: एक और मैसेज हमारे पास, वो लिखते हैं, डॉक्टर साहब नमस्ते, हमें गैस बहुत बनती है और पेट गुड़गुड़ करता है, क्या करें? प्रयागराज उत्तर प्रदेश से।
2: पहली बात तो ये रहेगी कि आप खाने पीने में कैसे खा पी रहे हैं, उसकी वजह से आपको क्या प्रॉब्लम ये हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ें खा रही जिससे गैस ज़्यादा आपको बन रही है। उसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, एक तो हब्बे कबित, सुबह शाम दो दो टेबलेट ले सकते हैं, गोली ले सकते हैं आप, और जवारिश में आप जवारिश शाही ले सकते हैं आधी आधी चम्मच सुबह शाम, और एक टेबलेट और ऐड कर सकते हैं हब्बे हल्दी जो कि हींग की गोली होती है, दो दो टेबलेट सुबह शाम आप ले सकते हैं। और पानी का ध्यान रखें, सोने का ध्यान रखें, खाने में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्ते गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब एंड FM रेनबो टीम को, मैं नीता अमरावती से, ये लिखते हैं, मैं FM रेनबो के प्रोग्राम सुनती रहती हूँ और हेलो डॉक्टर प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सभी परेशानियों का इलाज हो सकता है और सेहत के बारे में जानकारी भी मिलती है। तो ये कहते हैं कि इनको है ना अलग अलग भाषा का, मतलब अलग अलग स्टेट्स का खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी तकलीफ नहीं हुई है, लेकिन कभी कभी ने डर भी लगता है कि सुबह का खाना शाम को खाती हैं तो कभी कोई बीमार ना पड़ जाए, तो के ऐसे में हम क्या करें कि जिससे बीमार ना पड़े और सही रहे?
0: जी, काफ़ी अच्छा सवाल है इनका, और जाहिर है कि अगर उनका पेट ठीक है तो बहुत सी बीमारियों से खुद ब खुद बच सकते हैं वो। इन्होंने जैसा कि काफ़ी सैलानी टाइप का सवाल किया इन्होंने, तमाम सारे स्टेट्स के अलग अलग फूड्स हैं, तो अच्छी बात है, इनको तजुर्बा भी अच्छा है, लेकिन यही ख्याल करें कि हर इलाके का जो भी वो कहते हैं ना कि एक रवायती खाना जिसे कहते हैं, जैसे बिहार में चले गए आप तो वहाँ के लिट्टी चोखा बहुत मशहूर है, तो यकीनन वो बड़े काम का होता है और लोग खाएं तो उससे कोई नुकसान नहीं है। हमारे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा वगैरह बहुत मशहूर है, ये मज़बूत खाना भी है, उसमें यह है कि घी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कई बार लोग, घी का इस्तेमाल कम किया जाए। और रहा सवाल ये कि दिल्ली तो यानी समझिए कि भारत की राजधानी है, यहाँ तो हर तरह का खाना मिलता है, तो उन जगहों पर खाना खाया जाए, अगर कोई आदमी टूर पर निकला हुआ है तो सोचे कि मुझे कहाँ खाना चाहिए, तो वो ख्याल रखें कि जिस जगह होटल पर भीड़ ज़्यादा हो तो उन होटलों पर खाएं तो अच्छा रहेगा। उसकी वजह क्या है, वहाँ आम तौर से महसूस कर लिया जाएगा कि ज़्यादा
1: लोग खा चुके
0: खा
1: हैं, खा
0: चुके
1: रहे
0: हैं
1: हैं।
0: और खा रहे हैं, ताज़ा हो रहा होगा, ज़रूर खाना ताज़ा मिलेगा।
1: ये तो आपने हमें बताया कि जनरल में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। तो डॉक्टर सूफी आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के बचाव के लिए यूनानी उपचार कैसे करें? सबसे पहले तो बच्चों के लिए बताइए कि बच्चे क्योंकि दिन भर काम करते हैं, स्कूल में पढ़ाई भी करते हैं, बाहर गर्मी में खेलते भी हैं, तो उनके बचाव के लिए क्या करें?
2: उनको जब भी देखें कि ज़्यादा बाहर से खेल के आए हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा उनको थकान है कुछ है, तो कुछ घर में ऐसा ड्रिंक बना लें जैसे शुगर है, नमक है, लेमन है, ये चीज़ें बना के उनको ये दें। और इसके अलावा हमारे पास शरबत होता है, शरबत अनार है, आंवला है, आमला है, शरबत आमला एंड शरबत अनार, ये दे सकते हैं। और एक ड्रिंक बना के रखें, जैसे जिसको ORS की ही उसको एक शक्ल कही जाएगी, जिसमें कि लेमन है एंड नमक एंड शुगर मिला के थोड़ा सा जीरा भुना हुआ डाल दें, उसको दे सकते हैं, पिला सकते हैं उसको पानी में डाल के। आंवले का शरबत बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा इस वक्त, उसको भी दें। और इसका भी बहुत, अगर उसको कभी ऐसा लगे कि हाँ लूज मोशन या कोई ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है पेट की, तो शरबत बेलगिरी भी ऐड कर सकते हैं, दो दो चम्मच, सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन रहेंगी। रही बात प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में वैसे भी मेडिसिन थोड़ा अवॉइड करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी अगर उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो वही वही चीज़ जो हमारे पास जवारिश तमर हिंदी बहुत अच्छा इफेक्ट करती है, और हींग की गोली आती है जिसको हल्दी बोलते हैं, है ना, उसको दो दो गोलियां दे सकते हैं, उसके लिए बेहतर होगा। पानी वक्त पे पिए और शरबत आमला और शरबत अनार ये सब चीज़ें लेती रहे, इससे बहुत बेहतर
1: और
2: बेहतरीन रहेगा।
1: बुजुर्गों के लिए क्योंकि कई बार तो एकदम सर्दी होती है, कई बार एकदम गर्मी होती है, तो बदलते मौसम में कई बार बीमार पड़ जाते हैं, तो बुजुर्ग क्या करें?
2: बुजुर्गों के लिए तो भी यही सारी चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इसमें हमें लीवर की मेडिसिन थोड़ा ऐड करके रखना चाहिए बुजुर्गों के लिए। माजून दबीदुवर देना चाहिए उनको, जवारिश पुदीना विलायती देना चाहिए, एंड यही जैसे गोंद कतीरा है, चिया सीड, इन सब चीज़ों का वो थोड़ा सा शरबत बना के वो लेते रहें, पीते रहें।

0: गुड़ का भी यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। गुड़ भी बहुत फायदेमंद चीज है इन सारे शरबतों में। शकर ना यूज करके, शुगर ना यूज करके गुड़ का ही यूज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना जी।
1: एक मैसेज भी हमारे पास, वो लिखते हैं, सर मुझे गर्मियों में लूज मोशन की शिकायत रहती है 15 दिन में, तो सर यूनानी चिकित्सा में कोई इसका इलाज है?
2: जी, काफी अच्छा सवाल इन्होंने किया है। एक तो यही है कि जवारिश अनारायण का इस्तेमाल ये सुबह नाश्ता के पहले आधा चमचा सादे पानी से कर लें, ये काफी बेहतर रहेगा। और चूंकि गर्मियों में खास तौर से उनको शिकायत रहती है तो खाने का खास ख्याल रखें, उसमें बाहर की तली हुई चीज़ें जो आजकल फैशन में मोमोज वगैरह तमाम सारी चीज़ें हैं, जंक फूड्स वगैरह, उसका इस्तेमाल कम करें। और जो सीजन में कुदरत ने हमें दिया है, आम का इस्तेमाल है, केला है, पपीता है, अनार है, ये सब इस्तेमाल करें, अनन्नास है, इसमें जो उनको मिल जाए आसानी से कोई एक फल ज़रूर लिया करें। चूँकि ये जो मौसमी फल है ना, कुछ तो सदाबहार फल है, जैसे अनार है हमेशा मिलता रहता है, पपीता हमेशा मिलता रहता है, अनन्नास है ये भी आमतौर से मिलता रहता है, ये सब डाइजेस्टिव भी हैं और काबिज भी हैं, तो उनको जो लूज मोशन शिकायत दूर हो जाएगी इससे। इसके अलावा यह है कि वो एक गोली रात को सोते वक्त हब्बे सुमाक, सु मापरा का और का सुमाक, एक गोली रात को सोते समय ले लिया करें, ये बहुत काफी उनके लिए रहेगी। इसके अलावा डॉक्टर सुफिया हुसैन ने बहुत सारे मशरूबात का जिक्र किया है, शरबत आमला है, शरबत अनार है, सब इस्तेमाल करें बहुत फायदा रहेगा। शरबत बेलगिरी है, ये काफी हमारे यहाँ चलन में है, लोग यूज करते हैं। बेल का मुरब्बा भी लोग इस्तेमाल करते हैं सुबह नाश्ते के बाद, थोड़ा सा ले लिया, ज्यादा लेकिन ना लें, ये ख्याल रहे, चूंकि इन सब का मिजाज ठंडा होता है, तो ज्यादा ले लेने में ये नुकसान होगा कि हमें बदन में दर्द भी हो जाएगा और ज्वाइंट वालों को खास तकलीफ पड़ जाएगी, तो इसीलिए डॉक्टर के मशवरे से ही दवा ली जाए। कितना लेना है ये जरूरी है जानना, 10 ग्राम ज्यादा ना होने पाए।
1: सही मात्रा में लेना भी आवश्यक है
2: जी।
1: इस पर हम और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं समर्स डाइजेस्टिव इश्यूज एंड यूनानी मेडिसिन पर। एक मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं, हाय हियर, रिंकू याददाश्त बढ़ाने के लिए यूनानी मेडिसिन में दवाई है सर तो बताएं।
1: बहुत अच्छी दवा यूनानी में है। एक तो खमीरा गौजवान अम्बरी जवाहर वाला, ये सुबह सवेरे रोजाना इस्तेमाल करें वो। और अगर ये महंगा लगे तो इसका खमीरा गौजवान सादा भी आता है, तो सुबह नाश्ते से पहले एक चम्मच इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है, जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें एक अदद अखरोट का इस्तेमाल करें। ये एक अखरोट रोज़ाना यूज़ करना, एक से ज़्यादा नहीं। या पांच बादाम रात को भिगो दिया, सुबह छील करके उसका छिलका निकाला, फिर उसको इस्तेमाल किया। लेकिन इन सबको खाने के लिए थोड़ा सा वक्त दें, अच्छी तरह से चबाएं, क्योंकि अब ये मौका तो लोगों के पास है नहीं कि सील पर घिस करके इस्तेमाल करें। हालांकि बादाम घिस कर पहले इस्तेमाल किया जाता रहा, बड़ी फुर्सत रहा करती थी। तो चलिए कम से कम, अगर इतना मौका नहीं है तो देर तक उसे चबाएं। तो ये दो चीज़ का इस्तेमाल करें तो इनकी याददाश्त अच्छी रहेगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्लासिकल मेडिसिन यूनानी में मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत आम दवा है जो हर जगह मिल जाएगी, दवा भी और ड्राई फ्रूट भी।
0: ये तो आपने बताया कि क्या हम ले। एक मैसेज हमारे पास आया है, वो लिखते हैं, डॉक्टर साहब मेरा सवाल है कि आप मुझे वेट कम करने के लिए कुछ बताएं, पेट बहुत भार हो गया है। आसिफ सैफी फ्रॉम मेरठ।
1: एक तो यह है कि इन्हें जो नॉनवेज है उसका इस्तेमाल कम करना है। इसी के साथ जो है, कटहल, गोभी, बैगन, अरवी, राजमा, उड़द, पूड़ी पराठे, इसका इस्तेमाल भी कम करना है, जितना कम हो अच्छा है। दूसरे, सफूफ मुहज़्ज़िल और अर्क ज़ीरा, ये सुबह सवेरे नाश्ता से पहले, जब भी नाश्ता करने बैठें पहले इसको इस्तेमाल करना। एक चमचा सफूफ मुहज़्ज़िल और ऊपर से चार चम्मच, बड़ा चार चम्मच ज़ीरे का पानी, वो इस्तेमाल कर लिया करें। इसके अलावा यह है कि ये खाने में सुबह शाम खाना खाने के बाद जो है, हब्बे कबीद नौशादरी दो गोली इस्तेमाल कर लिया करें, इससे उम्मीद है। और सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें, सलाद या मौसम का कोई फ्रूट, जो फ्रूट इनको अच्छा लगे वो खा लिया करें।
0: लेकिन जैसे कि कई लोग होते हैं कि डायबिटिक हैं और साथ में उनको अल्सर की भी प्रॉब्लम हो गई, तो डॉक्टर सूफी आपसे जानना चाहेंगे तो वो क्या करें, क्या लें, अगर डायबिटिक भी है और अल्सर भी है, क्योंकि उसमें वॉमिटिंग और लूज मोशन की भी कई बार शिकायत आ जाती है साथ में।
2: उसमें आप, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है अल्सरेशन के लिए। एक तो अगर आपको माउथ में हुआ है, अगर माउथ में हुआ है तो हमारे यहाँ जरूर कुला करके एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, वो ले सकते हैं। अर्कियात भी ले सकते हैं इसमें।

0: अर्की मको और अर्की बादियान अर्की कास्ती वो ले सकते हैं, उससे बहुत अच्छा।
1: और अगर पेट में अल्सर है डायबिटिक के साथ,
0: उसमें भी अर्कियात का असर, अर्कियात का ही इस्तेमाल करेंगे हम ज़्यादातर, क्योंकि उसमें हम मीठी, ये दवाइयाँ हमारी मीठी होती हैं इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, या तो टेबलेट फॉर्म में कैप्सूल फॉर्म में देते हैं, या फिर जो है अगर उसको नहीं है शुगर तो फिर तो उससे मीठी ही दवा दी जाएगी। इसमें कैप्सूल वगैरह भी दे सकते हैं हम, जिग्रीन हमारे पास बहुत अच्छी आती है ना, और बाकी हबे कभी दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, और बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जिसको हम शरबत के भी उसमें दे सकते हैं शक्ल में। अगर शुगर है तो फिर सिर्फ अर्कियात पे डालेंगे एंड टेबलेट पे डालेंगे, और अगर शुगर नहीं है तो मैं उसमें माजून एंड जवारिश भी ऐड कर सकती हूँ, है ना। माजून दबीदुलवत का बहुत अच्छा इफेक्ट है, उसको ज़रूर देना चाहिए। इसलिए अर्क के साथ अर्क अजीब वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं जी।
1: तो कई बार होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, किसी को भूख लग रही होती है, किसी को नहीं लग रही होती है, और किसी को डाइजेशन नहीं हो रही होती है, तो उन तीनों केसेस में क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए यूनानी चिकित्सा क्या है?
2: हाँ, यूनानी में असल में अगर वाकई भूख नहीं लग रही है तो हम उसका काज देखते हैं कि क्यों नहीं लग रही है। लीवर में गड़बड़ी है या उसके आँतों में गड़बड़ी है, पेट में कोई खराबी है, एसिडिटी ज़्यादा है वगैरह। इसमें हमारे यहाँ जैसा कि बताया, जवारिश तमर हिंदी के साथ एक गोली आती है हब्बे कुर्स तुरश मुश्तही, तुरश मुश्तही कहते हैं उसे, मुश्तही मतलब इश्तहा यानी भूख लगाना, वो गोली होती है, खाना खाने के बाद दो दो गोली देते हैं उसको। इसके अलावा हम मेन कास्ट पर जाते हैं, ये देखते हैं उसको असल वजह क्या है भूख ना लगना, तो वो भी दूर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये दवा जो है, जैसे कि दवाएँ वो दी जाती हैं कि फौरी तौर पर उसके लिए काम आए, जैसे बुखार है किसी को, थबे बुखार दे दिया पहले कि भाई बुखार उसका उतरे, थोड़ा आराम मिले, क्यों हुआ वो बात की चीज़ है, वो देखा जाएगा। तो ऐसे ही है भूख ना लगना, ये एक बीमारी है एनोरेक्सिया, सीधी सी बात है कि उसका हमें काज देखना पड़ेगा कि वजह क्या है। जिगर कमज़ोर में आमतौर से ऐसा होता है, और कई मरतबा ऐसा होता है कि जो है वो डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं उसका सिक्रेशन कम होता है, तो देखना ज़रूरी होता है। हमारा खाने की जो सोचना ही चाहिए कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा वो मुंह से शुरू हो जाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, तो उससे सलाइवरी लार से राल या लार जो भी बोलते हैं लोग अपने जबान में, इलाके वाइज मशहूर है। तो जब हम, इसीलिए कहा गया खाना चबा चबा के खाओ, तो जो कुछ हम खाएंगे तो देर तक चबाएंगे, तो चबाने में वो जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ना वो अपना पूरा काम करेंगे, सिक्रेशन अच्छा होगा और लपेट भी देगा उससे, तो वो आधा सिस्टम शुरू हो गया, यही आधा डाइजेस्ट हो गया सह लीजिए, फिर वो जाएगा नीचे मैदे के अंदर स्टमक में, स्टमक में जो जाते ही जो है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, वो उस बाहर से आए हुए फूड को, हमारे जो भी हमने खाया इनटेक किया उसको जो है वो क्या करता, दो काम करता, कि अगर खराब है किसी किस्म वजह से तो उसको तेजाबियत में लग रख करके यानी शुद्ध कर देता है, जैसे आग जला देती है ऐसे ही उसका काम यही है। दूसरे सड़ने से बचाए, ये दो काम है तेजाब का, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे यानी आप मैदे में निकलती है खाते फौरन कुदरती तौर पर, जैसे हमने मुंह में रखा निवाला ऑटोमेटिक सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो गई, सलाइवा आ गया, ऐसे ही जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी तो HCl वो निकलना शुरू हो जाता है।
1: तो कुछ ऐसे यूनानी नुस्खे हैं जिन्हें हर कोई अपना सकता है और अपना कर दुरुस्त रह सकता है, डॉक्टर सूफिया?
0: आदमी खाने पीने का ख्याल रखे और फ्रेश खाना खाए, रात का रखा हुआ या कई दिनों का रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ये सब चीज़ें। कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा लीवर अगर सबसे बेशकीमती है तो उसको अच्छा बना के रखेंगे, उसी से सारी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं पेट की। तो नुस्खों में तो आप ये है कि जवारिश वगैरह ही दे सकते हैं एंड मक्को दे सकते हैं, सफ़ूफ़ हाजिम हमारे पास एक बहुत अच्छा आता है, नमक शेखुल रईस बहुत अच्छा आता है जो कि आप सलाद पे डाल के खा सकते हैं, फ्रूट का इस्तेमाल अच्छे से करें आप, और खाने का जो भी खाना आप खाएं वो फ्रेश होना चाहिए, उसके अलावा उसमें मिर्च मसाले का बहुत परहेज़ होना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें जो घर में चीज़ें हों उसका ही इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए।
1: और डॉक्टर सैयद, आप कुछ बताएंगे कि कुछ ऐसी चीज़ जिससे हम अपने डाइजेशन को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि क्या खाएं क्या ना खाएं वो तो सब बता दिया
2: जी,
1: लेकिन डाइजेशन मजबूत कैसे बनाएं?
2: बस इसमें ये ख्याल रहे कि हमारा लीवर जो है

0: जो सदियों से हुक्मा ने ये सिफारिश की है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे, उसके लिए लीवर यानी जिगर का सही होना बहुत ज़रूरी है, तो उसका ख्याल रखें। इसके अलावा जो है आदत में किसी दवा का इस्तेमाल ना रखें, लेकिन ज़रूरत पर सफ़ूफ़ हाजिम ये बना बनाया भी आता है, हम बना भी सकते हैं घरों में। जैसे उसमें जो अहम जुज़ है वो है सौंफ का, अजवाइन का, ज़ीरे का। ज़ीरा दो तरफ सफ़ेद और काला होता है, दोनों ले लिया जाए। नमक काला हो, और जो हम नमक खाते हैं नमक खुरदनी कहते हैं उसे, नमक लाहौरी, इन सब का मिक्सचर बना करके हम वज़न कहते हैं बराबर बराबर, जैसे 10-10 ग्राम ले लिया सबको, उसमें काली मिर्च है वो ले ली जाए, इसका एक पाउडर बना के रख लें हम, तो ये चीज़ जो है बहुत बेहतरीन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रहेगा। ये हम इस्तेमाल करें और सलाद का इस्तेमाल ज़रूर रखें।
1: वैसे समय हमारा जाने का हो गया है, लेकिन चलते चलते एक मैसेज हमारे पास आ गया है, तो मैं शॉर्ट में आपसे लेना चाहूँगी कि वो लिखते हैं कि सर एलोपैथिक में गॉल ब्लैडर स्टोन ऑपरेशन से निकाला जाता है, यूनानी मेडिसिन में कोई दवाई है जिसकी गॉल ब्लैडर स्टोन घुल जाता हो या खत्म हो जाए?
0: असल में
1: रिकू सिंह,
0: हाँ ये बहुत सही सवाल इन्होंने किया है, अच्छा सवाल है। इसमें चूँकि यूनानी में जो है हम दवाएँ जो देते हैं वो लीवर के इम्प्रूवमेंट के लिए देते हैं, ये सर्जिकल केस असल में है, इसलिए हम इसको रेफर कर देते हैं ताकि इलाज बिलियत के तौर पर यानी सर्जरी उसकी आसानी से हो जाए और उससे फायदा उठाए वो।
1: तो वक्त हो चला है जाने का, लेकिन जाते जाते एक लाइन में संदेश हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या देना चाहेंगे डॉक्टर सैयद, आप बता दीजिए संदेश हमारे श्रोताओं के लिए।
0: देखिए काफ़ी अच्छे सवाल आए, और मुख्तसर बात यह है कि हमने सबसे पहले भी ये बात कही थी कि सादा खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, समय से खाना खाएं और समय से सोएं, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम खुश रहें और खुश कभी रहें जब सेहत हमारी अच्छी होगी।
1: और डॉक्टर सूफी आप क्या संदेश देंगी?
2: मेरा भी यही कहना है कि खाना फ्रेश खाएं, ताज़ा खाएं, वर्जिश करें, नींद अच्छी लें और खुश रहें।
1: तो दोस्तों धूप की गर्मी पर हमारा बस नहीं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना हमारे हाथ में जरूर है। तो पानी भरपूर पीजिए, संतुलित आहार लीजिए और अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखिए, क्योंकि पेट रहेगा दुरुस्त तभी जिंदगी रहेगी मस्त। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर सैयद अहमद खान यूनानी एक्सपर्ट और डॉक्टर सूफिया उत्साही चीफ मेडिकल ऑफिसर यूनानी मेडिसिन CGHS। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया,
2: आपका भी बहुत शुक्रिया।
1: दोस्तों आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा, हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूंगी, अच्छी सेहत कोई मंजिल नहीं बल्कि जीवन भर की एक सतत यात्रा है, इसलिए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत, फिर रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ। स्वस्थ रहे, सजग रहे, मुस्कुराते रहे, नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे

0: डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए। यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी, ते तुसी इंजॉय कर रहे हो युवाणी प्रोग्राम आरजे दीक्षा।
1: तो दोस्तों अपने दोस्त आरजे शिक्षित दे नाल। सो दोस्तों, गाने तो बाद हुण वेला हो गया प्रोग्राम दे विच अगे वधन दा। ते दीक्षा, इदां हो सकदा कि असी प्रोग्राम पेश करिए साडे युवा दोस्तां दे लई, साडे स्रोतियां दे लई, ते उहनां नूं कोई नवां शब्द या फिर नवीं चीज़ ना सिखाईए।
0: जी दोस्तों, इत्थों मतलब तुहानूं पता लग गया होगा कि साडा सैगमेंट शुरू हो गया है जी वर्ड एक्सप्रैस, जिहदे विच असीं तुहानूं हर रोज़ एक नवें शब्द दे नाल मिलवाने आ ते उसदा इतिहास तुहाडे तक पहुँचाने आ। जी दोस्तों, अज दा जिहड़ा शब्द है ना, बड़ा ही ज़्यादा खूबसूरत है। शब्द है जी हजरत।
1: दोस्तों, जेकर इस शब्द की गल करिए तो काफी

पैसा ये पैसा ये पैसा और पैसा जरा पैसा बहुत जरूरी हो चुका है जी। इसलिए पैसे को संभालना भी बहुत जरूरी है। पैसे के नाल नाल एक होर अपडेट जरा है वह आ रहा है जी, जरा गोल्ड तुम लै रहे हो वो कुछ अपडेट ने, जिमें कि गोल्ड जरा लेंद 2 लाख तो उपर का लेंदे हो तो पैन कार्ड जरा मैंडेटरी जरा वह कर दिता गया जी। जे 10 लाख तो उपर का तुम गोल्ड बाय करते हो तो पैन आधार के प्रूफ ऑफ इनकम भी जी ओदी भी जरूरत होएगी। तो जरा बिल्स न स्प्लिट कर लेंगे अलग अलग वो भी नहीं अलाउड है। और जे इदा का मतलब जरा ज्वेलर है वह करता है तो उसमें पेनल्टी जी मिल सकती है 3% GST जरा गोल्ड के प्राइस से, 5% GST जी उस मेकिंग चार्जिस के उत्ते हैगी है जी। 1 लाख गोल्ड परचेज जी तकरीबन वो जी GST आएगी 8,000 रुपये तक दी। कुछ गाइडलाइनस ने जिमें कि तुसी वैलिड टैक्स इनवॉइस जिहड़ा आ ओह लैणा आ ताकि मतलब लीगल ट्रबल ना आवे। तो हॉलमार्क जिहड़ा आ ज्वैलरी ओही तुसी बाय करो। ये तो सी जी गोल्ड के उत्ते। और गोल्ड तो इलावा अजक ना वैसे चलो थोड़ी अलग गल कर लें, जो भी आप बाहर कहीं जाने किसी शहर के चाहे अपना शहर है या बाहरला शहर है तो जो भी जाने हैं तो कई बार ना रस्ता भुल जाने तो रस्ता जो भुल जाने या फिर नवी जगह जाने तो उस दे लिए आप करते हैं मैप लगा लें। पर कई जगह के उत्ते इदा होंगे कि नैटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है या फिर थोड़ा जोड़ा डाटा आ वह खत्म हो जाता या कोई होर दिक्कत आ सकती है जिस करके जो इंटरनेट जो यूज़ होना वह बंद हो जाता है। लेकिन उसका भी एक तोड़ जो तो दसन जा रहे हैं जी। उस दे लई तुसीं की करना है जी, गूगल मैप्स का एक फीचर है वह यूज़ करना है। कहड़ा जी? ऑफलाइन मैप्स नू यूज़ करना है। हाँ जी बिल्कुल जी, ऑफलाइन मैप तुसीं यूज़ कर सकते हो। ऑफलाइन मैप वरतन लई तुहानूं पहला इंटरनेट चालू करके, यानी कि तुसीं वाईफाई दे उत्ते तो वाईफाई चालू कर लो या अपने फोन दे उत्ते चालू कर लो। अपने फोन दे विच जगह या शहर का नक्शा जिहड़ा आ ओह डाउनलोड करना है। एक बार डाउनलोड होने तों बाद तुसीं बिना इंटरनेट दे नेविगेशन दे रस्ते जिहड़े ओह देख सकते हो। अपने फोन विच तुसी गूगल मैप्स खोलो अते अपनी ID जिहड़ी आ ओह लॉगिन करो। उस शहर या जगह का नाम खोजो और जिथे तुसी जाना चाहते हो, स्क्रीन दे हेठां उस जगह दे नाम या पते ते टैप करो। दोबारा दस दिना, एक बार अपना गूगल मैप खोलो तो अपनी ID लॉगिन करो। जो लॉगिन है तो कोई गल नहीं, फिर जो जिस जगह तुम जाना चाहते हो उसनों सर्च करो, उसका नाम लिखो तो उस तो बाद स्क्रीन के हेठा उस जगह के नाम या पते टैप कर दो। उस तो बाद मोर

0: भारती है।
1: मैं जट्टी अमला पगला दीवाना। दोस्तों जी बहुत ही प्यारा सोंग है जी, सारे नूं बहुत पसंद आता है और मैनू भी बहुत वधिया लगता है। और जो ये गीत लगता है ना जी, बस नचन का दिल करन लगता। मैं भी इतने नच नच के घूमू, मेरा पूरा गेड़ा कढ लिया सी स्टूडियो का, और मज़ा भी आता है जदों इदा का गीत लगता है। चलो बहुत वधिया, इहो जिहा गीत लगवाउण दे लई शुक्रिया जी। पर समा जिहड़ा आ देखो जी भज्जी जा रहा है जी, 9:38 जिहड़े स्टूडियो की घड़ी दे विच हो चुके ने और मैसेजेस बहुत सारे हले पे हुए ने, पर चलो कोशिश करते हैं।

टिवा टिवा नाशी खेड़ा कोई भी गीत कह रहे ने सुना दो जी। और बस मैसेजेस बहुत सारे पे हुए ने पर समा नहीं है जी। आओ इस प्रोग्राम दी आखिरी फरमाइश असी सुनते हैं जी, और मैनू इस प्रोग्राम नू इत्थे ही समाप्त करन दी दिओ इजाज़त दे। जान दा दिल तां नहीं कर रहा लेकिन समा इजाज़त नहीं दिंदा। आओ सुनते हैं इस प्रोग्राम दी जिहड़ी आखिरी फरमाइश, और इस प्रोग्राम इत्थे ही समाप्त करन दी दिओ इजाज़त जी। मिलदे अगले प्रोग्राम 'च, जाना कितनी है जी। सुनते रहना FM रेमो जलंधर, दिल तों दिल तक।

तेरे बिना जिंदगी गुजारेंगे नहीं, गुजरी अगर जिंदगी तो फिर संवारेंगे नहीं। तो जिस दिन नहीं होगी मेरे साथ, ए मेरी जान, तेरे अलावा हम किसी और को पुकारेंगे नहीं। बहुत ही प्यारी जी, वधिया जी शायरी अविनाश जी ने लिखी है। और ये प्रोग्राम शाम ए गज़ल 10 बज चुके ने और ये शुरू हो चुके हैं जी। और थोड़ा दोस्त कुलदीप इस प्रोग्राम में पेश कर रहा है। और कोई भी थोड़े विचों कोई शायर या कविता कोई लिखता है तां अपनी शायरी साढ़े नाल सांझी कर सकता है, लिखी हुई शायरी साढ़े कोल, और मैं अपने अंदाज़ से इस प्रोग्राम दे विच उस शायरी नूं ज़रूर शामिल करन दी कोशिश करांगा। और गज़लां दा सिलसिला 10:30 बजे तक जारी रहेगा। गज़ल प्यार दा एहसास और हर एक चीज़ दा तकरार दा जिहड़ी कि शायरी दे रूप विच तुहानूं दसांगे, सांझी करांगे और शायरी भी सुनावांगे ते नाल नाल प्यारी जीआं गज़लां भी सुनावांगे। ते आओ जी पहली गज़ल जिंदगी तूने जगजीत जी दी आवाज़ दे विच आओ सुनदे हां ये प्यारी जी गज़ल।

अंकित जी दियां कलम चुलकियां कुछ लाइना। हाले दिल बयां में सरेआम करता हूँ, हाले दिल बयां में सरेआम करता हूँ, अपनी कविता के हर अल्फाज तुम्हारे नाम करता हूँ। जो तुम हो तो लगता है पूरी दुनिया जीत जाऊँगा, जो तुम हो तो लगता है पूरी दुनिया जीत जाऊँगा, तुम बिन ये जिंदगी चंद टुकड़ों पर नीलाम करता हूँ। आले दिल बयां में सरेआम करता हूँ। और दिल दे उत्ते ही एक प्यारी जी।

कुछ अनकही सी बातें इन आँखों में होती हैं, कुछ अनकही सी बातें इन आँखों में होती है, दबे हुए जज्बात इन आँखों में होती है। लोग पढ़ लेते हैं चेहरे की मुस्कुराहटों को, लोग पढ़ लेते हैं चेहरे की मुस्कुराहटों को, मगर छुपे हुए हालात इन आँखों में होते हैं। कुछ अनकही सी बातें इन आँखों में होती है।

जा रहे हो तुम, रुको एक पल, थमी है नजर, डगमगाया है दिल। जो कभी साथ बीते थे हसीन पल, उनकी यादों का अब क्या करूं मैं। तुम जो जाते हुए मुड़े ना दोबारा, छूट गया हाथों से हाथों का किनारा। आंखों से बहती इन अश्कों की धारा, इन खामोशियों का अब क्या करूं मैं।

किसी महबूब को मनाने वाला खुद गुलाब लगता है, मेरा यार चांदनी में नहाया हुआ आफताब लगता है, लाख मनाने के बाद भी रूठा रूठा सा लगता है, मेरा चांद हर हाल में फिर भी नायाब लगता है, क्यों ना दुनिया के लिए आसमां का महताब लगता है, मेरा चांद ही मगर मेरे लिए आसमां बेहिसाब लगता है, खामोश मुस्कुराना तेरा चांद पे अब्र का हिसाब लगता है, जिंदगी के हर सवाल का मेरे तू ही जवाब, लाजवाब लगता है, लाजवाब लगता है।

मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली के उल

एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल और तुसी प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो जी। एक प्यार का नगमा है और प्यारे प्यारे नगमे हैं, प्यारी प्यारी जी शायरी दा सिलसिला जारी है जी। खोजते हैं प्यार की नई राहें, खोजते हैं प्यार की नई राहें, जहां साथ मिलकर बुने अनकहीं चाहें। धूप हो या छांव का हो बसेरा, हर मोड़ पर मिलता है तेरा ही पहरा। रास्ते प्यार के बड़े अजीब हैं, कभी फूल हैं तो कभी नसीब हैं। अनजाने मोड़ों से गुजरता है ये कारवां, हर कदम पर लगता है नया जहां।